You are tuned to the voices of the subcontinent. रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज 29 जुलाई है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा 2026, बुधवार 29 जुलाई 2026 यानी आज है। यह आध्यात्मिक गुरुओं और महर्षि वेदव्यास की जयंती का सम्मान करता है। ज्योतिष के हिसाब से बुधवार को ये पड़ता है 29 जुलाई 2026। तिथि शुरू होती है मंगलवार को 28 जुलाई को शाम 6:18 पर और ख़त्म होती है बुधवार को 29 जुलाई को रात 8:05 पर। आज का हमारा कार्यक्रम गुरुओं को समर्पित है, तो आइए हम जगजीत सिंह के गाए इस सुंदर भजन से इसकी शुरुआत करते हैं।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, ये गुरु भजन गाया था जगजीत सिंह ने। मित्रों, आज शुक्ल पूर्णिमा है और कल से श्रावण शुरू हो जाता है, यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। 30 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप है और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम गुरु को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा वो दिन जो सभी गुरुओं, मेंटोर्स, टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुओं को सम्मान देने के लिए डेडिकेटेड है। आपके गुरु आपकी माँ, पिता और बड़े भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि वे जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब है अपने गुरुओं की सच्ची प्रार्थना करके उनकी पूजा करना। आपके गुरु आपके भगवान भी हैं, इसलिए आपको इस खास दिन उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा सबसे खास हिंदू त्यौहार है जो सभी गुरुओं की पूजा के लिए होता है। इस दिन का हिंदुओं में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सभी भक्त अपने गुरु, मेंटोर, गाइड और भगवान की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक महर्षि वेद व्यास जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है।

वेद व्यास जय जय, ये भजन गाया था पंडित जय तीर्थ मेवुंदी ने और इसके बोल लिखे थे माधव कामत अरबत ने, संगीत दिया था उस्ताद रफीक खान ने। वेद व्यास जय जय। मित्रों, महाभारत भी वेद व्यास जी ने ही लिखा था। इस दिन को कई फॉलोअर्स बहुत खुशी से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और इस शुभ दिन पर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं। तो आइए, बौद्ध धर्म में गाया हुआ ये भजन गुरु के लिए हम सुनते हैं।

0: द गुरु रूट ऑफ ऑल अकम्प्लिशमेंट, ये बौद्ध धर्म से एक गुरु भजन था जिसे गाया था वज्र वाइब्स ग्रुप ने।
1: You're listening to People Powered Radio 2XXFM 98.3, streaming from our website 2XXFM.org.au. Community radio in Canberra since 1976, a volunteer-based organisation enabling individuals and groups within our community to participate in creating a diverse alternative to mainstream radio. You can support your community radio with your subscription, donation or sponsorship, or by volunteering on the air or behind the scenes. Find out more by visiting our website 2XXFM.org.au.
0: मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XXFM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार है या अज्ञान, और रु का अर्थ प्रकाश यानी अंधकार का निरोधक, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणा मूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और एकेडमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमता को साझा करने के लिए तैयार हैं। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा, जो जून जुलाई में पड़ती है, मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

ओमकार स्वरूपा, ये था मराठी में सुरेश वाडकर का गाया एक भक्ति गीत। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विधान है। शिष्य अपने गुरु की प्रत्यक्ष या उनके चरण पादुका की चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करते हैं। इस दिन अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने का विधान है।

सतगुरु तव चिंतना ने ये भजन गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणा मूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका एक नाम वेदव्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घीसा दास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीरदास के शिष्य थे।

गुरु परमात्मा परेशु। गाने वाले थे सुरेश वाडकर, संगीत दिया था श्रीधर फड़के ने, बोल तो थे संत एकनाथ के। शास्त्रों में मित्रों, जैसे मैंने पहले आपको कहा, गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन श्लाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी है। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है।

Adi Yogi, the very first and the originator of all yoga, Bhagwan Shiv. ये गाना ये भजन गाया था कैलाश खेर ने और इसके बोल लिखे थे भजन के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी गुरुओं को हमारा डेडिकेशन आपको पसंद आया होगा. आप 2XXFM 98.3 पर रेडियो हार्मनी सुन रहे हैं और मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता. आइए चलते चलते हम एक जाने माने गजल और भजन गायक अनूप जलोटा के जीवन और समय पर कुछ रोशनी डालें. अनूप पुरुषोत्तम दास जलोटा, उनका जन्म हुआ 29 जुलाई 1953 में, एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं जिन्हें भारतीय संगीत की भजन और गजल शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है. वे भजन सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं. भारत सरकार ने उन्हें सन 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया था. वे रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी थे. अनूप पुरुषोत्तम दास जलोटा का जन्म नैनीताल में एक भारतीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था और वे पंजाब के शाम चौरसिया घराने से हैं. उन्होंने लखनऊ के भातखंडे संगीत संस्थान में शिक्षा प्राप्त की. उनके पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा भी एक भजन गायक थे. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में गुजरात के सावर कुंडला में भी कुछ साल बिताए. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की.

भजन गाया था अनूप जलोटा ने और इसका संगीत दिया था अप्पा वाडवकर ने। जलोटा ने अपनी संगीत करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में कोरस गायक के रूप में की थी। उनके साथ आमतौर पर संतूर वादक, ढोलक, सरोद, सारंगी, वायलिन, सितार, तबला और गिटार वादक होते हैं। उनके कुछ लोकप्रिय भजनों में से ऐसी लागी लगन में, मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर हैं दो नाम और चादरिया झीनी रे झीनी शामिल हैं। वे 2002 से 2005 तक स्टार प्लस पर प्रसारित कार्यक्रम धर्म और हम के प्रस्तुतकर्ता भी थे। उन्होंने मुंबई में जगतगुरु श्री कृपालुजा महाराज से मुलाकात की और उनकी रचनाओं की कई सीडी जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की। 2008 में उन्होंने आगा खान की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शौकत कसम द्वारा निर्मित सीडी नूरानी चेहरा के लिए शीर्षक गीत गोल्डन मेमोरेबल यादें रिकॉर्ड किया।

हमसे अच्छी कहीं ये भी अनूप जलोटा का गाया हुआ एक गीत था। मित्रों रात के 8 बज रहे हैं और मुझे आपको अलविदा कहना होगा। मैं अगले बुधवार को फिर से आपका साथ चाहूँगा जब रेडियो हार्मनी पीपल पावर्ड रेडियो 2XX पर शाम 7 से 8 बजे तक ऑन एयर होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और इसके साथ बने रहें लैटिनो अमेरिकन अहोरा के लिए।